सबको दिक्कत क्या आती है ना, आप कहीं भी कोई सॉन्ग को यूज करते हो और कॉपीराइट आ जाता है, जिससे ना आपको वीडियो पैसा मिलेगा ना बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि खुद का सॉन्ग कैसे बनाते हैं, क्योंकि ना हमारे पास स्टूडियो है ना ही स्किल्स। तो टेंशन मत लो, सबसे पहले आपको सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना है, चाहे भोजपुरी हो साउथ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सॉन्ग पावर हाउस। अब मैं खोलने वाला हूँ जेमिनी है, एंड आपको यहाँ पर टैप करना है प्लस के ऊपर, एंड मैं सेम सॉन्ग यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसे करते हैं ओपन, एंड यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करने वाले हैं थ्रो, एंड प्लस पे जाकर टैप करना है क्रिएट म्यूजिक के ऊपर। वहाँ पर जैसा भी म्यूजिक चाहते हैं सॉन्ग होता है मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ आई वॉन्ट अ सिंगल ट्रैक, तो जैसा मॉडिफिकेशन आप चाहते हो आप एड कर सकते हो, आप चाहे लिरिक्स हो बीट्स हो कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। एंड देन मैं टैप करने वाला हूँ सबमिट के ऊपर, एंड हमारा सॉन्ग यहाँ पर बन चुका सिर्फ एक मिनट के अंदर। एंड आप इसे कहीं भी यूज करो, कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड रिसेंटली मैंने शॉर्ट फिल्म रिलीज की है, इसका नाम है बिहार प्रीमियर लीग। इसका मैंने सारे सॉन्ग्स एआई से जनरेट किए, वो भी इसकी हेल्प से, सेम प्रोसेस से। तो इससे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आप इजीली यूज कर सकते हो बिल्कुल सेम बीट जनरेट करने के लिए। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट का लिंक चाहिए तो उसके लिए जस्ट आपको हमारे पेज को फॉलो करना है, कमेंट में सॉन्ग टाइप करना है, तो उसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली डीएम कर दूंगा।